आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कूसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कूसम

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में जन्म जन्म ब्यूटीफुल ट्रैक दिलवाले मूवी से सुना आपने ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। नया महीना शुरू हो गया जी, 1st of October थर्सडे का दिन वीकेंड से शुरू हुआ है, इंशाल्लाह बढ़िया ही रहेगा। मेरा मापदंड यही रहता है, जो महीना वीकेंड से शुरू हो रहा है वो बढ़िया ही होता है, ऐसा मैं खुद से मान लेती हूँ, तो इवेंचुअली हो ही जाता है, यू नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, कैसे हैं, क्या हालचाल है, कल का दिन कैसा रहा आपका और वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? एक प्लान तो हमने बना ही रखा है आपका सैटरडे का, है ना। अभी आज शाम को और फ्राइडे को क्या करने वाले हो ये जानना चाहूँगी, पर आराम से, 4 घंटे हैं यार अभी तो शुरुआत हुई है। पहले आप एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग भेज दो मुझे।
1: अब ना जग की है परवाह कोई,
0: ऐसे जो कोई आपसे प्यार से बात कर रहा होता है ना, एकदम बहुत एडमिरेशन के साथ एंड बहुत वार्म्थ के साथ, तो जिस तरह से वो साउंड आता है ना उस इंसान का, वैसा ही आवाज मुझे रोमी की लगती है कि एकदम प्यार से गा रहे हैं और हमारे ही लिए गा रहे हैं। अरिजीत सिंह साहब, क्या ही कहूँ इनके लिए मैं। दिस इज ऑल्सो अनदर ट्रैक जो जब आया था मैंने इतना सुना है रिपीट पे, मतलब क्रेजी तरीके से, हर बार मतलब हर एक गाने के बाद मैं दोबारा से यही चला दूँ, मुझे इतना पसंद था ये गाना, अभी भी पसंद है। खैर, होना भी चाहिए क्योंकि वीकेंड है मेरी जान, तो फटाफट से आ जाओ, एक एनर्जी से भरा हुआ गुड मॉर्निंग भेज दो मुझे। फिलहाल मैं भेजियो श्रेया घोषाल और रूमी की आवाज में मिर्जापुर द मूवी से वारू फॉरएवर। स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: केदारनाथ मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में जाने सार, बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक। अगर कोई इतने प्यार से गाएगा तो कितनी भी बड़ी नाराजगी क्यों ना हो, दूर तो हो ही जाएगी, है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। और कल जो बड़ा ही फनी वाकया हुआ था कि वाजिद साहब का मैसेज आया था मुझे कि आप हमेशा नाज़रीन जी का नाम पहले लेती हैं, तो मैंने बताया कि भाई वो मैसेज पहले कर देती हैं इसीलिए उनका नाम पहले आ जाता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले मैसेज करूंगा, कल उनसे भी पहले करूंगा, तो आपको सबसे पहले नाम मेरा लेना पड़ेगा। पर ऐसा तो नहीं हुआ वाजिद जी, पहले तो नाज़रीन जी का ही मैसेज आया है। सो नाज़नी जी कहती हैं, सेंडिंग यू ऑल माय पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड एनर्जी दिस मॉर्निंग, आई होप टुडे इज अ ब्यूटीफुल वन फॉर यू, गुड मॉर्निंग। देन वी हैव अब्रार जी, ही इज सेंडिंग अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी 1st October। साथ में संतोष जी का भी मैसेज है, गुड मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड डे जी, बिंदास। एंड शशिकांत पाटिल जी भी हैं, वो कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नो दैट देर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल, एंड योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग, व्हेन यू फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज, एंड दैट इज सो सो सो ट्रू। एंड देन वी हैव वाजिद साहब, गुड मॉर्निंग वाजिद साहब। और जुल्फी जी का भी मैसेज आया हुआ है, स्क्रॉल कर रही हूँ यार, सबर करो। सो जुल्फी जी कहते हैं, यू डोंट नीड एवरीवन टू अंडरस्टैंड यू, द राइट पीपल विल अप्रिशिएट यू एग्जैक्टली एज यू आर, हैव अ लवली डे, एंड दैट इज सो सो सो ट्रू। और वैसे भी आप सबको खुश नहीं कर सकते यार, आप पिज्जा थोड़ी हो, मतलब मुझे बहुत पसंद है इसलिए बोल दिया, आपको जो पसंद है आप वहाँ पे पिज्जा खींचे के वो लगा लो, ठीक है। एंड मुझे कुशवा जी का भी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग तनीषा, हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं बताएं मुझे, क्या हाल चाल है। एंड अजीत जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, we have Bilal ji as well, good morning, subah bakhair, happy wala weekend। bhai weekend ka to aise naam sunte hi khushiyon ka jo lehar daud padti hai na, wo aapko meri awaaz mein sunai de rahi hogi, is cold bhari awaaz mein bhi weekend wala josh kam nahi hai meri jaan। aaiye sunte hain cool song of the hour, launch kar diya kuch der mein, stay tuned on Radio Banas, cool song Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour।
1: सर क्या पर ये बात है, कुसाम cool।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

तनिषा खुशी मूवी से अलका याग्निक और शान की आवाज में तेरे बिना। मुझे लगता है इस गाने का जब ब्रीफ दिया गया था ना सभी को, इवन दी एक्टर्स, दी कोरियोग्राफर, दी म्यूजिशियंस, दी कंपोजर्स, कहा जो आ रहा है वो कर दो, बिकॉज ऐसा ही है। एक तो आप गाना सुने, यू नो द बीट्स आर गोइंग हियर एंड देयर, और मे बी दैट इज सम स्टाइल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट एक लेमैन पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, और आप वीडियो देख लो बस, आप फरदीन खान और करीना कपूर खान का डांस देखोगे ना इसमें, यही लगेगा कि जो आ रहा है वो कर रहे हैं बस, किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, भाई ये सेट हमने ऑन कर दिया है कैमरा, आप यहाँ पे जो मर्जी आए करो। अजीब सा डांस हो रहा है, डू चेक आउट द वीडियो वंस, आपको बहुत हंसी आने वाली है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड लेट्स टॉक अबाउट द अक्टूबर थियोरी। सो अक्टूबर थियोरी एग्जिस्ट करती है और ये कहती है कि जो ये 90 डेज बचे हैं ना इस साल के, अब ये डिटरमाइन करेंगे आपका आने वाला साल ऑब्वियसली, और ये रिफ्लेक्शन है आपके बीते हुए 9 महीने पे कि ये 9 मंथ्स में हमने क्या करा है, बिकॉज ऑल दी हार्ड वर्क वी हैव बीन डूइंग इन पास्ट 9 मंथ्स में, जो भी सीड्स हम लगा रहे थे वो अब फाइनली फ्रूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड यू नो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं पॉजिटिवली। हो सकता है थोड़ा स्लो रिजल्ट्स हो, बट रिजल्ट्स विल बी देयर। सो अगर ये 9 महीने जो थे पिछले इस साल के, या आपने ऐसे जी तोड़ मेहनत करी है और यू नो फुल जोश के साथ, डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो ये जो अगले 90 डेज हैं ये अप्रिसिएशन का, रिवॉर्ड्स का टाइम है। जी हाँ, इट हैपन्स एवरी ईयर, इट गोज लाइक दिस ओनली, सो यू विल सी ऑल द थिंग्स यू हैव बीन वेटिंग फॉर, जो बहुत स्लो लग रहा था कि यू नो हो ही नहीं रहा है काम यार, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ यार, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। इवेंचुअली स्टेडली एंड स्लोली आपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे ना, वो ज़ाया नहीं जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ फल एकदम बढ़िया वाला पका हुआ आपको जरूर मिलेगा, एंड इंशाल्लाह जल्दी मिले, हम सबको मिले। सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, की आवाज में है जुनू फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क। स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।

0: एकदम फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए सब कुछ. कलंक मूवी से बड़ा ही कमाल गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुना आपने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं. अब आज थोड़ा थोड़ा लाइक्स हो रहा है क्योंकि जब मैं बाहर निकली सुबह ऐसे पहले चाय बनाने के लिए एंड देन ऑफिस को आने के लिए तो थोड़ा बेटर था. हवा जो थी वो एकदम क्रेजी गर्म नहीं थी पर बहुत ठंडी भी नहीं थी. इट वाज कहीं तो बीच में चल रहा था तो आई वाज लाइक चलो बढ़िया है बर्दाश्त करने टाइप्स तो है ये. एंड राइट नाउ द टेम्परेचर इज 33 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 39 डिग्रीज. 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलने वाली है और आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 39 हो सकता है और लोएस्ट 32 हो सकता है. एंड बहुत ज़्यादा वार्म रहने वाला है. इट्स नॉट लाइक डेंजरस हीट वाला सिचुएशन टुडे बट स्टिल इट विल बी वार्म. सो प्लीज़ ख्याल रखें अपना, मेरी तरह हालत ना हो. इस पे जोर डाल रही हूँ मैं रोज क्योंकि मुझे पता है दिस इज सुपर अनोइंग. आई मीन यू नो जिस तरह से आप रैंडमली ऐसे खांसना शुरू कर देते हो इट इज़ इतना परेशान कर देता है ना वो बॉडी को अंदर से. ऐसा लगता है सारा सिस्टम हिला दिया इसने मेरा. सो प्लीज़ ख्याल रखें उस चीज़ का कि आप इसकी झगड़ में ना आ जाएं. एंड यू नो लाइट खाना खाएं, बढ़िया खाना खाएं, बहुत सारा पानी पिए एंड फ्लूइड्स लें बहुत सारे और साथ में ठंडा गर्म वाला सिस्टम नहीं करना है कि एकदम धूप से आ रहे हैं ठंडा पानी पी लिया है क्योंकि भाई गर्मी क्रेजी नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है. नो डोंट डू दैट. अपनी बॉडी का ख्याल ना आपको खुद रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आता है. जब मैं बीमार हुई थी ना लाइक व्हेन इट स्टार्टेड द वायरल तो ऑफ लिया था मैंने एंड आई वाज फीलिंग सो लो एंड आई वाज मिसिंग माय मॉम सो मच क्योंकि यू नो जब आपको वायरल फीवर होता है तो बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है एंड यू जस्ट लूज ऑल द एनर्जी यू हैव कि भाई उठा भी नहीं जा रहा है, बहुत कष्ट महसूस हो रहा है उसमें. एंड आई हैव टू बिकॉज आई लिव अलोन हियर तो आई हैव टू गेट अप एंड डू ऑल द थिंग्स ऑन माय ओन. मुझे खिचड़ी भी खानी है तो मुझे ही बनानी है वो. और बीमार हो आप ऑलरेडी तो आप बाहर से ऑर्डर करने का रिस्क नहीं लोगे. आई वुड नॉट डू दैट. देन इफ आई वॉन्ट टू ड्रिंक यू नो टी विद ऑल दैट जिंजर एंड स्टफ वो भी मुझे खुद करना है. और फिर आई वाज कॉलिंग माय मॉम लाइक मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है यार, ये सब भी मुझे करना पड़ रहा है इतनी बीमारी के बाद भी. सो ऐसे टाइम पे बड़ा वैसा सा फील होता है कि यार कोई तो ऐसे आके हेल्प कर दे. देन यू नो माय कॉलीग्स व्हेन दे केम बैक होम फ्रॉम देयर वर्क दे हेल्प्ड मी. यू नो निशा वाज देयर, सिमरन ने मदद करी एंड एवरीथिंग. बट या यू फील दैट. सो वो वाली स्टेज में हम ना जाएं यही चाहती हूँ मैं. सो इसीलिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत है तो सब है मेरी जान. स्वस्थ रहें, मस्त रहें. सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास. क्या मम्मी जैसी बातें करने लग गई ना आजकल मैं.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, gonna.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई

0: चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जावेद अली साहब की आवाज सुनते ही।
1: जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ।
0: ये हुई ना बात, अब आई ना वीकेंड वाली बात।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: अमाल मलिक और शेयर खुशहाल की आवाज में आशिक सरेंडर हुआ बद्रीनाथ की दुल्हनिया से ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड कतर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है मसर ऐप एंड ये जो ऐप है इट इज डिस्क्राइब्ड एज कतर्स फर्स्ट स्मार्ट कैंपस मोबिलिटी ऐप सो चीजें काफी एफिशिएंट होने वाली हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो ऐप है इट इज डिजाइन टू मेक गेटिंग अराउंड द यूनिवर्सिटी कैंपस इजियर एंड मोर efficient, obviously very much required. And students, faculty or staff use kar sakta hai ise to access campus transportation and mobility services. Real-time information aapko wahan par milegi, you know, whatever is happening around the campus, aapko uske baare mein sab kuch us app ke through pata chal sakta hai. So basic aim ye hai is app ka, so that you know transportation efficiency jo hai, accessibility aur overall campus experience jo hai, usko aur improve kiya jaye, usse aur behtar banaya jaye, you know sabhi ke liye, students ke liye, faculty ke liye and jo dusra staff hai university mein. It is part of Qatar University's efforts to create a smarter and more digitally connected campus. The way we are evolving in technology, iska istemal ye hamari jo roz ki zindagi hai use efficient banane mein hona hi chahiye and this is such a great step. Aur ekdam badhiya zabardast hit bhi main aapke liye bhej rahi hu. Stay tuned and Jio Bindas.
2: Ab suniye Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव
1: रिचार्ज. Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam the conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Overseas release by Zee Studios.
6: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: Tanisha.
1: जावेद बशीर साहब की आवाज में ये तुमने क्या किया, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा से बड़ा ही खूबसूरत गाना. एंड कतर नेशनल लाइब्रेरी ने अक्टूबर का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस कर दिया है, बात करते हैं उसके बारे में. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. सो जो अक्टूबर का प्रोग्राम है इट फोकसेस ऑन कल्चर, हिस्ट्री, इंक्लूजन, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं चिल्ड्रन के लिए, यंग पीपल के लिए, अडल्ट के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बेसिकली सब के लिए कुछ ना कुछ है. यू नो यू कैन टेक पार्ट इन वर्कशॉप्स, टॉक्स होंगी, एग्जिबिशंस हैं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, इन सब में आप पार्ट ले सकते हैं. और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो हाईलाइट करेंगे कतर के हेरिटेज और हिस्ट्री को, इंक्लूडिंग इट्स कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल कलेक्शंस. एंड जो प्रोग्राम है इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, गिविंग पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट. काफ़ी सारे एजुकेशनल और क्रिएटिव सेशंस भी डिज़ाइन किए गए हैं, यू नो बच्चों में लर्निंग और कम्युनिटी इंगेजमेंट को एंकरेज करने के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर फ्री, कुछ में प्रायर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ यू नो वेबसाइट पर चेकआउट कीजिए QNL की. एंड जो भी आपको बढ़िया लग रहा है उसके लिए फटाफट से रजिस्टर कर दो. और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है.
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10, 20, 30 प्रमोशन.
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10, 20, 30 के प्राइस रेंज में.
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे. और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट.
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है.
1: नेस्टो 10, 20, 30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स.
2: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा।
1: शालमिल कुलकर्णी की आवाज में शहजादे से परेशान। अमेजिंग गाना, बहुत अमेजिंग मूवी भी। मेरे लिए अमेजिंग इसलिए क्योंकि मेरी पहली मूवी थी जो मैंने बांक मार के देखी थी। नो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको ऐसा करना है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज व्हाई आई लव विंटर्स इन कतर। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मिशरब, माई वाइफ इज बैक एट मिशरब डाउन टाउन दोहा फॉर अ फुल विंटर सीजन। अक्टूबर 2026 से ये शुरू होगा, मतलब कि महीना शुरू हो ही चुका है। एंड मार्च 27 तक ये चलने वाला है। क्रेजी भाई साहब। सो देयर विल बी म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, कल्चर, वेलनेस, स्पोर्ट्स और फैमिली एक्टिविटीज होने वाली है। डिफरेंट लोकेशंस विद इन मिशरब डाउन टाउन, जितने भी विजिटर्स हैं उनको वराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वहाँ पे। और जो एक्टिविटीज हैं उसमें लाइव म्यूजिक होगा, डीजे परफॉर्मेंसेज होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, फिटनेस होगा, वेलनेस सेशंस होंगे एंड काफी सारे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे। ऑल्सो फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज भी डिजाइन की गई है टू मेक द एरिया मोर एंगेजिंग फॉर विजिटर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। तो बड़ों से लेकर छोटों तक सबके लिए कुछ ना कुछ है वहां पर। एंड द विंटर सीजन इज इंटेंडेड टू मेक मिशरब अ रेगुलर डेस्टिनेशन फॉर कम्युनिटी गैदरिंग एंड एंटरटेनमेंट रादर देन जस्ट अ शॉपिंग और डाइनिंग एरिया। एंड इट इज वर्थ इट मेरी जान, बहुत ही अमेजिंग है। और अब तो आपके लिए वहाँ पे रोबो एजेंट भी रखा हुआ है हमने, अगर कुछ भी डायरेक्शन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। सो ऑल इन ऑल विंटर इज ऑलमोस्ट हियर। आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, तो मेरी एक्साइटमेंट ऐसे ही निकलती है। बेयर विद इट।

0: love this track. रानी मुखर्जी का वो लहंगा यार बड़ा ही सुंदर था. जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो. Another जानम track for you. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. Sundariya Radio Olive, Chiyo, Bindas. Cool song. Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Cool song.

0: सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: मेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st to 4th October तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Danisha.
1: हल्का याग्ने का रमिता बच्चन की आवाज में शाबाश शाबाश यार. वो जो इसके बाद आता है ना, ए क्या बोलती तू, वो भी ऐड कर देना चाहिए था गाने में, बढ़िया बढ़िया रहता. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम. तनिष आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. आज का जो सवाल है वो इतना ज्यादा लेम है कि अगर आपको जवाब नहीं आया तो आप सोचोगे कि भाई कुछ तो क्रेजी होगा. और वो जवाब इतना ज्यादा क्रेजी है, एक्चुअली क्रेजी है. आई एम सुपर एक्साइटेड. द क्वेश्चन इज, 7 और 9 में क्या फर्क है? 7 और 9 में क्या फर्क है, ये आपने मुझे बताना है 3311 1063 पर. हिंट दे देती हूँ, इसका जवाब एक गाने में है. गाना स्पेसिफिकली रणबीर कपूर का है. सोचो 7 और 9 में क्या फर्क है, ये आपने मुझे बताना है 3311 1063. एंड द हिंट इज कि गाने में जवाब है इसका और गाना है रणबीर कपूर का. सोचे और बताएं. फिलहाल भेज रही हूँ विशाल डडलानी की आवाज में खबर नहीं दोस्ताना मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.

0: 106.3 FM.
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद.
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट बीमा.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. टीएनसी अप्लाई.

0: Tanisha.
1: Absolutely love this track. You're listening to Radio All at 106.3 FM. Tanisha, I have case set. Bindas mornings chal rahe hain abar.
2: Lame jams.
1: So lame jams ka sawal maine aaj pucha tha ki 7 aur 9 mein kya fark hai. And hint bhi de diya tha maine ki Ranbir Kapoor ka gana hai. Gaane mein hi jawab hai. And we have got answers over here. Bilkul bhi mujhe disappoint nahi kiya gaya hai. Bada aise proud mehsoos karti hoon main jab aap log aise sawalon ke jawab de dete ho. So sabse pehle mujhe message aaya Nihal ka ekdam correct answer ke saath. Then we have Fahim, we have Malik, Shree ka message aaya hai, Mohammed is there, Fahad ka message hai, and Jul likha hai kisi ke naam ki jagah. To please apna naam likhe dosto. Shailesh ji ka message hai, Raju ji ka message hai. Then we have DM ka message, we have emoji ek naam ki jagah, unka bhi message aaya hai. Arthur ka message hai hamare paas, Athar ka message hai hamare paas, Mohsin ji ka message hai, we have Sana ji, we have Manish, and quite a few answers over here. And the correct answer is jo aap sabne diya hai. मैं माफी चाहूंगी इसके लिए तो जब मैं गाना सुन रही थी एंड देन यू नो इट जस्ट क्रॉस्ड माय माइंड आई वाज लाइक अरे ये तो फन रहेगा यार और फिर जब मैंने पूछा अपने आसपास लोगों से तो उन्होंने जो गंदी शक्लें बनाई थी आय हाय हाय मैं नहीं भूल सकती वो लेकिन आप बड़े प्यारे हो यार आप साथ दे देते हो मेरी हर इस ऐसी लेम चीजों में दैट इज व्हाई आई लव यू गाइस और इसी बात पे एक कमाल गाना आपके लिए हमजा मलिक और जैन जोहेब की आवाज में अल्फाज ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम जियो बिंदास मेरी जान
3: रेडियो

0: की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स साड़ी चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी
1: हाफ पे बैक शॉप मोर गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट
3: लुलू Where the world comes to shop.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: This student of the USA, ये जवानी है दीवानी, only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है अब. वैकी विस्टम में बात करेंगे टी कप्स की, स्पेसिफिकली चाइनीज टी कप्स की. सो उनकी खासियत ये है कि चाइनीज टी कप्स में ना कभी हैंडल्स नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कप इतना गर्म है कि आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं बिना हैंडल के, मतलब कि चाय अभी पीने का वक्त नहीं है. इट इज़ टू हॉट फॉर यू टू ड्रिंक एज वेल. तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड देन जब थोड़ी ठंडी हो जाए एंड यू नो आप उसे उस कप को बिना उस हैंडल का जो कप है उसे पकड़ पा रहे हो, तब उसको पीना है. सो दैट यू नो यू कैन सेवर द टेस्ट ऑफ इट, द अरोमा, एंड यू नो जितने प्यार से चाय बनी है उसको उतने ही प्यार से यू नो पिया जाए और उसको इन्जॉय किया जाए. एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वो. एंड ऑल्सो इट टीचेज अस वेरी अमेजिंग लेसन ऑफ लाइफ ऑल्सो. आई थिंक ग्रेट डिज़ाइन का मतलब यही है जो आपको यू नो सटली ऐसे लाइफ की फिलोसफी सिखा जाए कि हम इतना भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, वी आर रशिंग. एक गोल अचीव कर लिया तो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं. यूँ नहीं कि अभी इसे अचीव किया, ये चीज़ हमें मिली, हम इसे थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर इन्जॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा रह कर खुद को स्लो डाउन करें, थोड़ा सा पॉज लें, एंड वॉट एवर वी हैव इन आर सराउंडिंग राइट नाउ, द ब्लेसिंग्स वी हैव, हम उन्हें इन्जॉय करें, उन्हें एडमायर करें, और यू नो वो ग्रेटफुलनेस जो है वो आए इवेंचुअली. दैट इज द थिंग इट ट्राइज टू टीच अस, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज वी ऑल नीड दैट डेस्परेटली. क्योंकि वीकेंड टू वीकेंड जो हम भाग रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि वीक निकल कर

इसी का तो ये सोल्यूशन है कि थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपने पास और इन्जॉय करो।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. Main hoon Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
2: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights. No guns, no bombs, no fists or the knives.

0: Tanisha. Tanisha.
1: Tanisha. I love this track to the core. बहुत ही, और वो बच्चे ने इतना प्यारा गाया है. देवू खान इज द किड जिन्होंने गाया है और साथ में शेड डिक्सन है. एंड amazing track. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath. Bindaas morning chal raha hai yahan par. By the way, the movie is Dhanak. If you haven't watched it, beautiful movie. Do watch it. And right now, main lekar aa gayi hu word of the day for you.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: So aaj ka jo word hai wo hai philomath. P-H-I-L-O-M-A-T-H. Philomath. Basically a person who loves to learn, gain knowledge about new things every day. Rancho from Three Idiots. उसका कहना था ना कि किसी भी क्लास में बैठ जाओ आपको नॉलेज तो मिल रहा है, जस्ट टेक इट. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर स्टॉप्स लर्निंग. इन जनरल वी पीपल इन लाइफ वी कीप इवॉल्विंग बाय लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, राइट? सो वी ऑल आर इन अ वे फिलोमैथ. जो नहीं सीख रहा है वो नहीं है फिलोमैथ, सिंपल इज दैट. बट लर्निंग इज द वे आई थिंक ओनली टू इवॉल्व इन लाइफ. एंड अनदर थिंग आई रेड कि जितना ज़्यादा आप दुनिया घूमोगे और जितना ज़्यादा आप नए लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आप कम जजमेंटल होते जाओगे. बिकॉज यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं, everybody is going through some or the other things. सबकी life में कुछ ना कुछ difficulties हैं. It's just मुझे मेरा पता है ना तो मुझे अपनी ही बड़ी लगती है, पर ऐसा है तो नहीं. So that is why they say कि traveling बहुत important है, बहुत सारे लोगों से मिलना बहुत important है अपनी जिंदगी में, and हर रोज कुछ नया सीखना बहुत important है. That is why I keep bringing these new words for you. Sending Zabardast Hit Your Way. Stay tuned on Radio Bindaas.
2: Ab suniye Olive ka Zabardast Hit.

0: feelings.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: Zoom बराबर Zoom से Alisha Chinoy और Neera Sridhar की आवाज में Ticket to Hollywood only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके sad में 10 mornings चल रहे हैं यहाँ पर. And yesterday I saw the one about Matthew Perry का trailer. जी हाँ, documentary कह लो, some docu-series कह लो, you know, it is coming on Matthew Perry, Friends से जो Chandler है उनके ऊपर, उनकी life story है, उनकी journey है, and it is so emotional, it is so beautiful, the trailer, same emotions I had जब Friends का reunion हुआ था after 20 years, oh my god, I have cried, like, you know, उन्हें इतना देखा है, कि they have become this old and you know this grown up and they are also revisiting the show they did together with us. It was so beautiful and so surreal to see. I'm super excited. ये Matthew Perry की जो docu-series आ रही है उसके लिए. और साथ ही में Coffee with Karan का आखिरी सीजन आने वाला है इस बार. जी हाँ, इसके बाद no controversies anymore. कोई भी ऐसे sensationalized जो स्टेटमेंट्स दे जाते हैं स्टार्स, जिनको बहुत ही मिर्च मसाला लगा के और ज़्यादा स्कैंडलाइज कर दिया जाता है, वो सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं. ये लास्ट ईयर है, तो आई थिंक जितने भी यू नो बॉलीवुड वाले होंगे, वो सब कोशिश करेंगे इस बार कुछ बढ़िया तगड़ा कंटेंट निकल जाए, सो दैट हम आगे का कुछ वक्त निकाल पाएं. या सो लेट्स सी. और कह रहे हैं कि इस बार का जो यू नो गेस्ट लिस्ट है वो काफ़ी क्रेजी है, विच आई ऑल्सो सॉ. आई एम नॉट श्योर कि वो सब आ रहे हैं या नहीं, बट अमेजिंग इट इज. आई एम वेटिंग फॉर दिस वन बाय द वे. Also to all the people who keep asking कि हमें कब कॉल आएगा, हमें टिकट कब लेनी है, देखो कॉल्स ऑलरेडी जाना शुरू हो चुके हैं. कुछ लोगों को आज भी कॉल आ जाएंगे अगर अभी तक नहीं आए हैं तो. And you can come and collect your tickets today. 4 PM तक आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी टिकट्स कलेक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ ब्रिंग योर QID जो आपने हमें हमसे शेयर की है, ठीक है. और बाकी सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: Tanisha.
1: नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। इतने सारे वर्जन हैं इस गाने के और जितने भी सुनो सब खूबसूरत, एंड स्पेसिफिकली अगर नुसरत साहब की आवाज में है तो भाई अलग ही बात है। यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर 9:50 हो चुका है क्लॉक में, दैट मीन्स मेरे क्लॉक आउट करने का वक्त हो गया, मेरे जाने का वक्त हो गया है। एंड अब हम मिलते हैं संडे को। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ये जो वीकेंड है एकदम बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है, फ्रेंड्स फैमिली जिसके भी साथ आपने प्लान किया है, जो मूवी के लिए मिल रहे हैं सैटरडे को, वो वील सी यू दैट डे। ऑल्सो प्लीज टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, ओके? वीकेंड में खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, बहुत जरूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान। संदरे रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

दिवस, कितने दिनों के बाद आज चांद निकला, ऐसा हम बोलेंगे जब वीकेंड जो है आ जाएगा, यानी फ्राइडे जो है आ जाएगा, क्योंकि फ्राइडे से फ्राइडे की दूरी बहुत ज्यादा लंबी लगती है यार। वेलकम 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखिए वीकेंड आ चुका है, यानी एक एनर्जी का बहाव जो है वो बॉडी में बढ़ चुका है, यानी अब खून के साथ साथ एक्साइटमेंट जो है वो भी मेरी रगों में बह रहा है। तो देखो यार, वीकेंड पर क्या कुछ किया जा सकता है, यानी क्या कहाँ पे आप जाने का प्लान बना सकते हो, किस तरीके से घर पे चिल कर सकते हो, स्ट्रेस किस तरीके से दूर भेज सकते हो, और क्या क्या नया है ऐसा जो रिलीज होने वाला है OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिर थिएटर्स में, इन सब चीज़ों पर आज हम अपने शो यानी लाइफ मस्त है पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम आपकी कि यार आपके हाल चाल कैसे हैं। हाई हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो बोल दो यार, 3311063 पर आ जाइए, हाई हेलो गुड मॉर्निंग कर दीजिए, मुझे अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज दीजिए और फिर हम बातचीत जो है वहां जारी रखेंगे। फिलहाल जो है प्यार मांगा है तुम्ही से गाना जो है बिल्कुल सही टाइम पर आया है, सो ये गाना वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13. दैट इज 10:13. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली.
4: हे, दिस इज लियाना डिक्रूज.
5: दिस इज मी ऋतिक रोशन.
6: हाय, आई एम आलिया भट्ट.
7: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय. एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.

0: मुझे ना ऐसा लग रहा था कि इस इमोशनल गाने के साथ मैं भी जो है फोन उठाऊं और मम्मी को फोन कर ही दूं कि मम्मी याद तो देखो आपकी आ रही है। फिर मुझे ये भी याद आ गया कि अगर मैंने मम्मी को फोन किया तो फिर मम्मी मुझसे चार सवाल पूछेंगी कि तुमको ये काम करने के लिए बोले थे तुमने किए या नहीं किए। तो मम्मी की याद आए ना आए, मम्मी ने जो काम दिए हैं उन्हें हमेशा याद करते रहना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आज की हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं दिल से जो है ये भी कोशिश करती हूँ कि मैनिफेस्ट करूँ कि यार मौसम भी और ज़्यादा मस्त होता जाए। वैसे तो कंपेरेटिवली जो है गर्मी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन जो करंट टेम्परेचर है वो आज भी 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर में एक डिग्री की जो है ऐसे कम हुआ है टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ गया है, 31 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है। लेकिन देखिए हल्का हल्का चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ 45 डिग्री सेल्सियस पे थे हम, कहाँ पर हम जो है बिना ह्यूमिडिटी के अब 38 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन देखिए माहौल में कूलनेस को बढ़ाने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आपका इंतजार कर रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो इंजॉय करो। एंड बाकी मैसेजेस जो है वो आ गए कुछ लोगों के अभी भी बाकी है, सो अगर आप उन बचे हुए कुछ लोगों में हो तो 3311063 पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाल चाल या आसपास की फोटोज जो है वो मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर 3311063। आपकी कशिश जो है वो आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार करिए। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हिमेश सुरेश अमिया जी, कितनी बार समझाया है आपको, तेरा मेरा नहीं बोलते, आपका बोलते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ आपकी कशिश, मूवी का नाम रखने वालों ने बिल्कुल सही रखा था नाम, आपका सुरूर, लेकिन हिमेश रेशमिया जी ने उसे तेरा सुरूर कर दिया। मैच करता है देखो, बट आप करके बात करनी चाहिए। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, मैं आप लोगों से इतना इज्जत से बात करती हूँ तभी तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो मुझ तक आ पाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने जब मैंने कहा कि यार मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो कह दो, सो क्यूट क्यूट मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। साइमन जी ने गुड मॉर्निंग, मेरी कशिश लिखा है, मेरी कशिश नहीं आपकी कशिश हूँ मैं, बट मैं आप सबकी हूँ, ऐसे पर्सनली किसी की नहीं कह सकते आप, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद कमल सिंह जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग कमल जी, कैसे हैं आप। उसके बाद हमें एक और गुड मॉर्निंग आया है मोहम्मद यूसुफ खान जी ने, ऑफ कोर्स एक बहुत ही बढ़िया सा मैसेज लिखा है, एंड इन्होंने हमें याद दिला दिया है कि आज जो है थर्सडे है, सो थर्सडे को ऑब्वियसली हमें बहुत सारा फन जो है वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप सबके क्या हालचाल है, आज के क्या प्लान्स है, ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। और थोड़ी सी देर में मैं आपके जो वीक का पूरा स्ट्रेस है ना, इसे आप वीकेंड पे किस तरीके से पीछे छोड़ सकते हो, इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाली हूँ। ऐसा कुछ बहुत ही यू नो अलग सा कुछ का नहीं बताऊंगी, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार याद दिला दूं तो आपका शायद प्लान जो है वो कल का यही बन जाए। अब बाकी सब तो देखो अल्लाह ही जानता है, एंड इसी बात पे जो है एक ऐसा ही गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम जो है बढ़ाकर अमेजिंग वाला गाना इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो विद अस।

0: बिल्कुल इसी गाने की तरह मेरी मम्मी भी मुझे ताने मारती है जब मैं वीकेंड को वीकेंड की तरह मनाने की कोशिश करती हूँ। उनका वीकेंड का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है ऑफिस से जैसे ही फुर्सत होए घर की ड्यूटी पे लग जाएं। आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने हैं और अगर आपको वो काम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको जो है अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि काम घर पे बहुत है, बस आपको नहीं दिख पा रहा है। आप साफ जो है सीलिंग को फिर से साफ कर सकते हैं, जो सोफा बहुत अच्छी तरीके से एक जगह पे रखा हुआ है आप उसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, यानी आप बस फ्री नहीं बैठ सकते वीकेंड पे। ये मम्मी का जो है कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये भी उनके उसमें गलत नहीं है, क्योंकि आप जितने बिजी रहते हैं आप उतने नेगेटिव थॉट से जो है दूर रहते हैं, लेकिन हाँ आप खुद को फिजिकली एग्जॉस्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए रिलैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो आज जो है मैं आपको स्ट्रेस को दूर किस तरीके से भगाया जाए ये मैं बताने वाली हूँ। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो देखिए, भले ही कल कितने भी आपको काम करने हो, लॉन्ड्री करना हो, आपको ग्रॉसरी लेने जाना हो या जो भी करना हो, लेकिन आप एक चीज जो है वो ध्यान रखेंगे और वो है रिलैक्सेशन का। हाँ जी, आपको जो है अपनी स्किन केयर पर थोड़ा सा फोकस करना है। सो साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर्स जो है वो ये कहते हैं कि जब आप स्किन केयर करते हैं तो आपको खुद ऐसा फील होता है कि आप पहली बार खुद के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी स्किन तो अच्छी देखो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ आपको खुद के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम भी मिलेगा। तो एक एक स्टेप को जो है आराम से कीजिए। एंड आप लड़के मुझे कहेंगे कि कशिश हम कैसे करें, गाइस आपके लिए ना स्किन केयर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जनरली अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, तो वीकेंड्स पर आपको अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान जो है वो देना होता है। सो आप कोई फेस पैक जो है वो लगा सकते हैं, एंड कुकुम्बर की कुछ स्लाइस जो है वो अपनी आंखों पर रख कर म्यूजिक चलाकर, लाइट वाला म्यूजिक चलाकर, रेडियो जो है वो ट्यून इन कर आप बैठ सकते हैं आंख बंद करके, तो खुद के साथ थोड़ा वक्त भी आपको मिलेगा एंड आपकी बॉडी को, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड जब आप ये करते हैं ना तो दुनिया भर के जितने भी थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। बस देखो एक बार ये ट्राई करो वीकेंड पे, फिर ना ये रिचुअल सा बन जाएगा कि हर वीकेंड एक घंटे के लिए तो एटलीस्ट ये करना ही करना है। वैसे अगर आप एक रूटीन बनाना चाहें तो आप सुबह उठकर जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सर पे ऑयल लगा सकते हैं और ये मास्क एंड ये कुकुम्बर वाली चीज़ कर सकते हैं, फिर एक एवरीथिंग शार जो है वो ले सकते हैं। अब एवरीथिंग शार अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं किसी और दिन बताऊंगी, फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है चांद। तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया, दुल्हन हम ले जाएंगे मूवी से। अब देखिए यार, कुछ लोगों का गाना मुझे समझ नहीं आता है, ये ना लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और इन जिन कंफ्यूज्ड लोगों की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंफ्यूज लोगों की लिस्ट में मैं नहीं आती। अब देखिए, रणवीर सिंह जी जो है, जब डॉन मूवी का जो अगला पार्ट है वो करने वाले थे, शाहरुख खान जी की जगह लेने वाले थे, तब जो है सब रणवीर सिंह को ट्रोल कर रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, शाहरुख की जगह कोई कैसे ले सकता है। लेकिन अब जब किंग में रणवीर सिंह का कैमियो जो है वो फिक्स हो गया है, तो सब इतना खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ फिर चलेगा, कि हम ना शाहरुख के साथ रणवीर को देख सकते हैं या अलग से रणवीर को देख सकते हैं, लेकिन शाहरुख की जगह रणवीर को नहीं देख सकते। यानी इन्हें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि शाहरुख को हम कम क्यों देखें भाई, शाहरुख को ही लो यार हर मूवी में। वैसे 24th of December को जो है डेट सेव करके रख लो, क्योंकि शाहरुख खान फैंस आपको किंग देखने को मिलने वाली है बड़े पर्दे पे। एंड मैं और मेरी कलीग जो है वो किंग का जो ट्रैक लॉन्च हुआ था टीजर में, वो बार बार सुनते रहते हैं, क्या स्वैग वाला गाना है यार वो। मतलब ऐसा मजा आ जाता है ना कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको कॉलर ट्यून, रिंग टोन सब कुछ लगा लेती, लेकिन ज्यादा हो जाएगा फिर मेरे घर वाले जो है वो कहेंगे कि बहुत ज्यादा शाहरुख पगलू नहीं हो रहे हो आप। वैसे आप कितने एक्साइटेड है शाहरुख खान की मूवी किंग के लिए, ये मुझे बताइए। बाकी मार्वल की भी बहुत सारी मूवीज के साथ जो है इसका क्लैश होने वाला है, तो कलेश तो देखो होने ही वाला है। बल्कि आप जो है क्या प्रेफर करोगे, मार्वल की मूवी या फिर एसआरके की मूवी? मतलब एसआरके यूनिवर्स अपने आप में अलग लेवल का है ना, सो बताइए मुझे 3311060 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर, हाउसफुल 2 का दफा कर गाना जो है वो एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट

0: मजा तो तब आ जाए जब आप लोग भी ऐसे ही मुझे हाय हेलो कर दो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल अफेयर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइव मस्त है। हाँ जी, और देखिए हाय हेलो की मैं बातचीत अगर मैं करूँ ना तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग हाय हेलो करके रखा है और मैं मैसेजेस पढ़ ही नहीं पाई। सो निहाल और शमनाज ने जो है मुझे गुड मॉर्निंग कहा है एंड एक ऑडियो नोट भी भेजा है। उसके बाद अभिषेक जी ने जो है अभी अभी कशिश लिखा है। कशिश लिखने से क्या होता है? हाय, अच्छा हाय कशिश लिखा है। सो देखिए आप लोग भी ऐसे जो है मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग भी मैसेज कीजिए 3311063 पर। थोड़ी सी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका ट्रेलर अभी अभी लॉन्च हुआ है। सो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर ऑली फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Year. Ye gana

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: Overseas release by Zee Studios.

अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में गेरुआ गाना दिल वाले मूवी से आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। हाँ जी, किस किस को वरुण धवन जो है दिलवाले मूवी में एक्सट्रीमली क्यूट लगा है। मतलब जो यू नो वो स्टारडम का क्वोशेंट है वो तो एसआरके एंड काजोल ने पूरा कर दिया था, लेकिन वो क्यूटनेस जो है वो कृति एंड वरुण लेकर आए थे इस मूवी में। मतलब मैं सच में दिलवाले वाली मैं फैन हूँ। अब आपकी कशिश जो है लाइफ मस्ट शो आपके लिए लेकर आई है, तो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश तो देखो करेगी ना। बस इसीलिए एक नया ट्रेलर जो कल मैंने देखा है उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। मूवी का नाम है नई नवेली एंड यामी गौतम इसमें बहुत ही ज्यादा अडोरेबल, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आनंद एल रॉय की जो है ये मूवी है एंड इसमें जो है आपको शुरुआती 3-4 सेकंड्स में ना ट्रेलर के ऐसा लग जाएगा कि ओह ये तो नया यू नो कोई जैसे गुल्लक एक सीरीज आई थी या ऐसी जो होमली सीरीज होती है ना मिडिल क्लास फैमिली वाली सीरीज है वैसी लगेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे बिल्टअप जो है वो होगा एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड बहुत दिनों बाद ऐसी कोई फैमिली कॉमेडी मूवी जो है वो लॉन्च हो रही है, सो अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको स्त्री 1 या स्त्री 2 अच्छी लगी थी तो हो सकता है कि आपको ये मूवी भी अच्छी लगेगी। बाकी आगे हमें देखना है कि और इसके गाने आएंगे और धीरे धीरे करके सबके रिव्यूज आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। बाकी मुझे तो ऑल एंड ऑल अच्छा लगा। आप एक बार देख के अपना रिव्यू भी मुझे बता दो और ये पता चल जाएगा ना कि आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन कितने मैच करते। फिलहाल क्यों मजा आ रहा है गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर विशाल मिश्रा की आवाज में, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। आने के बाद एक बहुत ही टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय
1: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12, दैट इज 12:12। स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास।
4: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुक वाकिफ अलखोर।
5: Hi there friends, this is DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: शेफ मूवी से ये थे अरमान मलिक अपने गाने तेरे मेरे के साथ, और मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मास्टर। हाँ जी, और यार देखो क्या होता है ना कि मैंने अभी जो है अक्टूबर शुरू हो गया है, एंड मैंने अपने डेस्क पर एक शुरू में एक पोस्टर लगाया था जिसपे मेरे पूरे ईयरली गोल्स लिखे हुए थे कि मुझे वेट जो है वो कम करना है, हेल्दी खाना है, सेविंग करनी है, एंड इंस्टाग्राम पे इतने इतने फॉलोअर्स चाहिए। उनमें से एक भी काम नहीं हो पा रहा है, तो मेरा इतना मजाक उड़ता है फैमिली ग्रुप में एंड ऑफिस में भी, जिन लोगों को उस पोस्टर के की रियलिटी पता है उन लोगों के साथ। काफ़ी गिल्ट होता है ना जब आपने ये सोचा होता है कि आप हेल्दी खाओगे एंड अच्छा खाना खाओगे ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, आपको अच्छे से अच्छा फील हो, हेल्दी फील हो, लेकिन आप नहीं कर पाते। और स्पेशली ये और टफ हो जाता है जब आप वीकेंड पर जाते हो। जैसे ही वीकेंड आता है आपको पता नहीं कहाँ से दुनिया भर का मीठा खाने का मन हो जाता है, केक पेस्ट्री सबकी याद आ जाती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट है जो मैंने भी ट्राई किया और बहुत ईजी है, अगर मुझ जैसा लेजी इंसान अगर ये डेजर्ट बना सकता है तो कोई भी बना सकता है। सो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अच्छी डार्क चॉकलेट लेनी है एंड उसको जो है एक बोल में मेल्ट कर लेना है। मतलब मेल्ट ऐसे नहीं करना है, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। सो जैसे ही आपने बार जो है वो चॉकलेट की बार ली एंड उसको जो है तोड़ा एंड एक बोल में रखा, एंड तभी जो है आपको जो कॉफ़ी होती है ना एक्सप्रेसो ले सकते हो आप, ये नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी जो है वो गर्मा गर्म जो है आपको डालनी है उस चॉकलेट के ऊपर, एंड तभी उस बोल को जो है उठाकर बर्फ के ऊपर रख लेना है ताकि वो साथ साथ में जो है फ्रीज भी हो, एंड उसको विस्क करना शुरू करना है यानी उसे फेंटना शुरू करना है, एंड तब ये एक थिक मूसी टेक्सचर बन जाएगा एंड ये आप आइसक्रीम की तरह जो है इसे खा सकते हो, एंड ये सच में गिल्ट फ्री, शुगर फ्री है एंड बहुत यम होता है। ट्रस्ट मी, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कुछ भी खा ले, मुझे बहुत ज़्यादा यू नो चटपटा खाना चाहिए होता है, टेस्टी खाना चाहिए होता है। सो इसीलिए ये एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत इजी रेसिपी है। बाकी अगर कुछ मिस हो गया हो इसमें से पार्ट, तो आप 3311063 पर मैसेज कर देना, मैं पूरी की पूरी रेसिपी आपको भेज दूंगी। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

हाँ जी, नाम मीरा है, लेकिन हिमेश रेशमिया जी, आपको एक बार समझाया, समझ नहीं आ रहा है कि तेरा नहीं आपका होता है, जिसे मैं कहती हूँ आपकी कशिश हूँ मैं। इज्जत से तहजीब से बात करते हैं हम। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड देखो यार, वीकेंड आते ही ना एक स्ट्रेस जो है वो दिमाग में जो है दौड़ने लगता है कि किस तरीके से इस वीकेंड को बचाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। पिछले वीकेंड पे जो हम बोर हुए थे, हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ ये सोचते रह गए थे कि अब बाहर जाएंगे, कहाँ बाहर जाएं, तो अभी से डिसाइड कर लो। इसीलिए मैं कुछ जो है ऐसी चीज़ें लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आप जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, एंड बेसिकली कतर पर रहने का जो है फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहले तो इंटरनेशनल आइसक्रीम शो जो है उसमें आप जा सकते हो, ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में हो रहा है, ये 3 अक्टूबर तक चलेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद मैंने सारी ग्लिम्स आपसे शेयर की थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन 2026 की सारी ग्लिम्स आपको जो है हमारे रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मिल जाएगी, सो वहां जाकर देख लो। बाकी अगर आपको वहां जाके पर्सनली एक्सपीरियंस करना है तो फ्री एंट्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ है। सो दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जाकर, यानी DECC जाकर, आप दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन 2026 जो है वो देख सकते हो। उसके बाद फेस्टिव एग्जीबिशन भी लगी हुई है मैरियट सिटी सेंटर दोहा में, सो वहां पर भी एंट्री बिल्कुल फ्री है, सो आप वहां पर भी जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हो रही हैं, जैसे एक मेंटलिस्ट जो है वो शो होने वाला है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें देखिए कतर में होती रहती है, बस आपको ढूंढने की देर है। सो आप जो है रेडियो ऑलिव की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि कतर में वीकेंड पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, सो जाकर वेबसाइट भी एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना राष्ट्रीय मूवीज आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए एंड मुझे व्हाट्सएप पे बताइए कि आखिर आप क्या स्पेशल करने वाले हैं। हो सकता है कि आपसे इंस्पायर होके मैं अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से स्पेंड कर लूं। जिंदगी से गाने का नाम है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: है 10-20-30 प्रमोशन,
1: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
0: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
1: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
0: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

गाइस ये वाला गाना जो है वो फुल वॉल्यूम में अगर आप अपनी कार में चलाएंगे तो आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि यार लैम्बोर्गिनी जैसी अमेजिंग गाड़ी जो है वो मेरे पास भी होगी। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ अक्टूबर थ्योरी के बारे में। हाँ जी, मुझे भी अभी पता चला है। सो अक्टूबर के बारे में एक बात कही जाती है कि लाइफ के जितने भी मेजर चेंजेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर अक्टूबर में होते हैं या उनकी शुरुआत जो है वो अक्टूबर से होने लग जाती है। यानी अगर अपने हेल्थ में आपको एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है तो वो आपको अक्टूबर में जो है होना शुरू हो जाता है, या अगर कोई भी अच्छी आदत है, बुरी आदत है, या रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो अक्टूबर थ्योरी के हिसाब से कोई भी बड़ी चीज जो है वो अक्टूबर में उसकी शुरुआत होती है, या कुछ भी बड़ा चेंज जो है वो अक्टूबर में होता है। सो देखिए, ये महीना जो है कहा जाता है कि अगर आप जितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ वही होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप साल भर वो करने की कोशिश कर रहे होते हो जो आपने साल के शुरू में जो है डिसाइड किया होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हो, आप कर नहीं पाते हो। थोड़ा बहुत अचीव करते हो लेकिन पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते हो। सो ये जो महीना है आपको रियलाइज कराता है कि भाई देखो, रियलिटी तो ये है, आपके असली रिपोर्ट कार्ड जो है वो क्या है, तब आप अपनी रियलिटी जो है उसको देख पाते हो एंड उसके हिसाब से फैसले लेते हो एंड फिर आगे बढ़ पाते हो। सो अक्टूबर थ्योरी कहीं ना कहीं मुझे तो देखो सही लग रही है। बाकी आपका क्या कहना है कि क्या आपके लाइफ में मेजर चेंजेस अक्टूबर में हुए हैं या नहीं हुए, ये मुझे बता सकते हो 3311063 पर आकर। फिलहाल जो है मैं तो यही कहूँगी कि यार मैनिफेस्ट करो, बढ़िया बढ़िया मैनिफेस्ट करो, खुद के लिए, अपने साथ वाले लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी। बाकी अब देखिए मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, सो मैं जाती हूँ। आपको वीकेंड जो है इंजॉय करना ही है, देखिए करना ही है। हाँ अच्छा, मैनिफेस्ट अच्छा करना है, ठीक है। सो वीकेंड इंजॉय कीजिए। बाकी 4 बजे जो है मैं आपके लिए द टेक शो लेकर आ जाऊँगी, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात होगी मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। फिलहाल जो है जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर भी सुनाऊंगी, कॉकटेल 2 मूवी से बंधु 2.0 आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना एंड गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना एंड अपने साथ वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखना, सनस्क्रीन लगाते रहना। मौसम में बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है, सो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना ताकि आपको जो है मेरी तरह सर्दी से ना जूझना पड़े। बाकी टाटा बाय बाय एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।

0: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
1: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
0: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
1: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी.
0: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
2: लुलू, where the world comes to shop.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना, वो मेरा हमशक्ल.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
5: Jonita Gandhi.
6: Radio Olive, I'm a number one.
4: You are listening to me on Radio Olive.
5: Radio Olive.
4: Gio Bindas.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
0: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

गुड आफ्टरनून ऑल रिचार्ज फैमिली. अक्टूबर का फर्स्ट डे है और ऑनेस्टली अक्टूबर स्टार्ट करने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है. एक तो थर्सडे है और ऊपर से है इंटरनेशनल कॉफी डे. क्योंकि आज इंटरनेशनल कॉफी डे है और कॉफी एक अजीब सी चीज है ना. किसी के लिए कॉफी का मतलब गुड मॉर्निंग, लेट्स सर्वाइव द डे. किसी के लिए मुझे 15 मिनट दे दो प्लीज, डोंट टॉक टू मी, और चैन से मुझे अपनी कॉफी पीने दो. और किसी के लिए कॉफी इज बेसिकली पर्सनैलिटी ट्रेट. ब्लैक कॉफी वाले लोग आई लाइक दिस थिंग्स यू नो सिंपल. और एक्स्ट्रा शॉट वाले लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और फटाफट से बस ब्लैक कॉफी पी के निकल जाते हैं. तीसरा कोल्ड कॉफी वाले जिन्हें आप मेरी कैटेगरी में ले सकते हो. मुझे कॉफी भी चाहिए और यू नो थोड़ी सी मिठाई खाने का भी मन करता है, तो यू नो बढ़िया सी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और क्रीम्स बनवा के मैं तो वो एंजॉय करती हूँ. लेकिन कॉफी की स्टोरी ना सिर्फ कब तक लिमिटेड नहीं है. दुनिया भर में कॉफी फार्मिंग जो है वो मिलियंस ऑफ फार्मर्स और कम्युनिटीज की यू नो जीवन जीने की कनेक्शन की जिसे आप कह सकते हो कनेक्टेड है ये लोग. इसीलिए इंटरनेशनल कॉफी डे सिर्फ कॉफी को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, कॉफी के पीछे के फार्मर्स और सप्लाई चेन को रिकॉग्नाइज करने का भी दिन है. सो आज एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आपका कॉफी ऑर्डर क्या है. और प्लीज एनीथिंग इज फाइन मत बोलना, क्योंकि मुझे ये बड़े ही खतरनाक लगते हैं जो बोलते हैं कॉफी के मामले में एनीथिंग इज फाइन. मतलब कैपेचिनो भी चलेगा, लाटे भी चलेगा, मतलब शॉट भी चलेगा, बट नो आप मुझे अपनी चॉइस बताइए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान, नंबर सेम है 3311063. कॉफी के मामले में एनीथिंग इज नॉट फाइन. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.

0: भाई कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज बोरिंग. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. आज एक और इंटरेस्टिंग डे है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, जो वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ की बिगनिंग भी मार्क करता है. और वेजिटेरियन लोगों से क्वेश्चन मैं रोज सुन रही होती हूँ कि आप क्या खाते हो. एक्सक्यूज मी, हम खाते हैं बहुत कुछ. हमारे पास बहुत कुछ है जिसमें बहुत प्रोटीन है, ठीक है. पनीर है, डोसा है, राजमा है, छोले हैं, आलू पराठा जो हर किसी का फेवरेट होता है, और साउथ इंडियन फूड का तो पूरा यूनिवर्स ही है. सो प्रॉब्लम फूड की नहीं है, प्रॉब्लम है इमेजिनेशन की. और मुझे लगता है कि फूड आइडेंटिटी का भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, फूड आपको घर की याद दिलाएगा ही दिलाएगा. एक सिंपल दाल का टेस्ट भी कभी कभी 5-star रेस्टोरेंट से ज्यादा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि उसमें मेमोरी का मसाला होता है भाई. सो आज का जो डिबेट है वो ये है कि आपको एक हार्ड कोर वेजिटेरियन को ऐसा कुछ खिलाना है जो उसे इम्प्रेस कर दे. सो टेल मी कि वेजिटेरियंस में क्या बेस्ट है. और प्लीज सैलेड मत बोलेगा. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मुस्कान आपके साथ है. ये है ऑलिव रिचार्ज. नंबर सेम है 3311063. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ

भाई कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज बोरिंग. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज. आज एक और इंटरेस्टिंग डे है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, जो वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ की बिगनिंग भी यू नो मार्क करता है. और वेजिटेरियन लोगों से क्वेश्चन मैं रोज सुन रही होती हूँ कि आप क्या खाते हो. एक्सक्यूज मी, हम खाते हैं बहुत कुछ, हमारे पास बहुत कुछ है जिसमें बहुत प्रोटीन है. ठीक है, पनीर है, डोसा है, राजमा है, छोले हैं, आलू पराठा जो हर किसी का फेवरेट होता है, और साउथ इंडियन फूड का तो पूरा यूनिवर्स ही है. सो प्रॉब्लम फूड की नहीं है, प्रॉब्लम है इमेजिनेशन की. और मुझे लगता है कि फूड आइडेंटिटी का भी इंटरेस्टिंग यू नो पार्ट है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, फूड आपको घर की याद दिलाएगा ही दिलाएगा. एक सिंपल दाल का टेस्ट भी कभी कभी 5-star रेस्टोरेंट से ज्यादा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि उसमें मेमोरी का मसाला होता है भाई. सो आज का जो डिबेट है वो ये है कि आपको एक हार्ड कोर वेजिटेरियन को यू नो ऐसा कुछ खिलाना है जो उसे इम्प्रेस कर दे. सो टेल मी कि वेजिटेरियंस में क्या बेस्ट है, और प्लीज सैलेड मत बोलेगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मुस्कान आपके साथ है, ये है ऑलिव रिचार्ज. नंबर सेम है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

देखो भाई, आज जो मैच थे वो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और मेंस क्रिकेट सेमीफाइनल था आज, एशियन गेम्स की मैं बात कर रही हूँ सेमीफाइनल में। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ऑफ कोर्स ऑल ऑफ रिचार्ज। सो बात इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था, बात ये है कि एशियन गेम्स क्रिकेट को हम कितना सीरियसली देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आता है तो पूरे लोग, मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज के मैचेस होते हैं, वो देख रहे होते हैं। बट एशियन गेम्स, सडनली क्रिकेट एक लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम का पार्ट बन गया है। यहाँ आपको क्रिकेट के साथ शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉकी और पता नहीं कितने स्पोर्ट्स हैं जो देखने को मिलेंगे, और शायद यही एशियन गेम्स की ना ब्यूटी है। इंडिया सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हमारी स्पोर्टिंग आइडेंटिटी ना बहुत बड़ी है। जो आज का सवाल है मेरा आपसे वो भी यही है कि आप इंडिया का एशियन गेम क्रिकेट मैच देखते हैं, या आपके लिए क्रिकेट का असली एक्साइटमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप या मेजर जो सीरीज होती है उन्हीं में होता है। यू टेल मी। बाय द वे, मैं तो स्कोर्स बीच बीच में देखती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान, नंबर तो सेम है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

Olive Park. Song of the Year.

एशियन गेम्स की बात हो रही थी तो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन कि भाई आज इंडिया पाकिस्तान का भी हॉकी सेमीफाइनल है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल ऑफ रिचार्ज. यस, हॉकी की भी अपनी ना एक इनक्रेडिबल जर्नी है, हिस्ट्री है. क्रिकेट से पहले भी हॉकी जो है इंडिया और पाकिस्तान की स्पोर्टिंग आइडेंटिटी का ह्यूज पार्ट था. ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, और जब ये टीम्स ना आमने सामने होती हैं तो स्पोर्ट्स के साथ हिस्ट्री और इमोशन भी ग्राउंड पर आ जाते हैं कि यार इससे पहले क्रिकेट खेला था, अब हॉकी का मैच है. बट आई लव वन थिंग अबाउट हॉकी, क्रिकेट में बॉल के साथ ना हमारी आंखें चलती रहती हैं लेकिन हॉकी में बॉल को फॉलो करना ही एक वर्कआउट हो जाता है. इतना फास्ट गेम है, आप एक बार जब इसको देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा, और खेलना तो बहुत ही मुश्किल है. सो यू टेल मी कि आपको कौन कौन से मैचेस हैं जो एशियन गेम्स में देखना पसंद है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और आज वीकेंड भी है तो अपने प्लान जरूर बताइएगा. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सो नाउ द डिस्कशन विल बी वेरी सीरियस. क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है और कतर में थर्सडे का एक अलग ही इमोशन है बिकॉज टेक्निकली वीकेंड हैज बिगिन. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल एवरी रिचार्ज. कल अलार्म नहीं बजेगा तो आज असली क्वेश्चन है कि आज रात का क्या प्लान है आपका? डिनर आउटसाइड करने का, दोस्तों के साथ कहीं कॉफी बजाने का, बाय द वे आज इंटरनेशनल कॉफी डे भी है, मूवी जाने का, किसी बीच पर जाने का, या फिर लेट नाइट ड्राइव या फैमिली डिनर पर प्लान है. बाय द वे आज 1st of October है. हर पहली तारीख को मैं आपसे कहती हूँ कि यार पहली तारीख इज वेरी स्पेशल क्योंकि सैलरीज आ जाती है, प्लस वीकेंड है तो आपके पास टाइम भी है और सैलरी भी है. उसी के साथ वो यू नो लेजेंडरी प्लान जो बनाते हैं, जो प्लान बनाते ही नहीं है, बस कहते हैं कि मैं घर पे रहूँगा. और ऑनेस्टली दैट इज़ ऑल्सो अ प्लान. एक्चुअली हम इतना प्रेशर लेते हैं वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना, कभी कभी भूल जाते हैं कि रेस्ट भी तो प्लान कर सकते हैं हम. सो कदर व्हाट्स अप, मतलब क्या प्लान है आपका, आप मुझे फटाफट से बताइए और हो सकता है आपका प्लान किसी और को भी अच्छा लग जाए. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, ये है ऑलिव रिचार्ज और नंबर सेम है 3311106. दैट्स माई ये प्लान है मेरा कि मैं आपके सबके प्लान सुनूंगी और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा प्लान लगेगा वही मैं भी कॉपी कर लूंगी. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

भाई अगर आपका इनर चाइल्ड ना अभी भी पोकेमॉन गेमिंग कॉमिक्स और इन सब में you know, खेलता रहता है तो ट्रिविया सुनते एक्साइटेड हो जाते हो आप, देन लिसन अप। गीकेंड 2026 स्टार्ट हो चुका है और ये चलने वाला है 3rd of October का तक, मतलब ये पूरा वीकेंड आप इंजॉय कर सकते हो लुसेल में और ये रहेगा दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक। देर आर गेम्स आर्ट, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, ट्रिविया है, कैरियोके है, लाइव परफॉर्मेंस है एंड इवन इन मतलब आपको बहुत सारे इवेंट और वो सब मिल जाएगा वहाँ पे। टिकट जो है वो स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 25 कतरी रियाल से, बट मुझे इवेंट से ज़्यादा ना ये जो वर्ड है गीक इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आज गीक होना एक्चुअली कूल है और बॉलीवुड ट्रिविया गीक हो सकता है, बुक्स गीक हो सकती है, फुटबॉल गीक हो सकती है, टेक्नोलॉजी गीक हो सकती है, मेकअप गीक हो सकता है, इवन एयर फ्रायर भी हो सकता है। सो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज है कि कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ दे और आप बस 15 मिनट लेक्चर दे दो उस पे, सो कंग्रेचुलेशन, यू आर अ गीक। सो टेल मी, आप किस चीज़ के इतने गीक हैं, मतलब आपको हर चीज़ पे अच्छा लगता है इतना बोलना, कॉन्वर्सेशन करना, या फिर यू नो कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑफकोर्स ऑल ओवर रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

बस एक गाना प्ले होता है और आपकी पूरी यादें आपके सामने आ जाती है। और ऐसा होता है भाई, आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे है और म्यूजिक की सबसे खूबसूरत क्वालिटी यही है, डजंट जस्ट एंटर योर ईयर्स, मतलब ये एंटर करता है आपकी सीधी यादों में। एक गाना सुनते ही सडनली स्कूल का क्लासरूम याद आ जाता है, कॉलेज का कॉरिडोर, आपका पहला क्रश, पहला हार्ट ब्रेक, शादी, फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर सिटी का रोड, और ये वो एक पर्सन जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो, वो भी याद आ जाता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। यस, आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे है, सेम सॉन्ग, सेम लिरिक्स, सेम सिंगर, बट आपकी स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट। और रेडियो में तो हम इस फीलिंग को ना रोज देखते हैं, कोई लिसनर कॉल करके बोलता है ये गाना मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, कोई बोलता है कि यार ये मेरा कॉलेज का गाना था, और

बोलता है रियलाइज करता है कि म्यूजिक इज बेसिकली अ टाइम मशीन विदाउट अ टिकट. सो यू टेल मी आपकी लाइफ का वो कौन सा एक गाना है जिसके साथ कंप्लीट मेमोरी अटैच्ड है आपकी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: अब यहाँ पे म्यूजिक की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट AI वर्सेस ह्यूमन म्यूजिक. अब म्यूजिक की बात चल रही है तो एक सवाल मेरे मन में आया कि व्हाट हैपेंस व्हेन AI स्टार्ट्स मेकिंग म्यूजिक. आज AI लिरिक्स लिख सकता है, मेलोडी क्रिएट कर सकता है, बीट बना सकता है और इवन हम इंसानों की तरह आवाज भी जनरेट कर सकता है. रिसेंटली एक सिंगर हैं जो सबसे बढ़िया सिंगर्स में से एक है, शंकर महादेवन जी, उन्होंने AI से म्यूजिक पर बात करते हुए कहा कि AI यूज करने में मतलब इनहेरेंटली कुछ रॉन्ग नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज़ यूज रिस्पॉन्सिबली. ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस ओपन्स अ मच बिगर कॉन्वर्सेशन कि भाई AI क्रिएट कर सकता है म्यूजिक को, ब्यूटिफुल लिरिक्स को, परफेक्ट मेलोडी को, आवाज़ को. सो आप सुनोगे और आप बोलोगे कि वाह यार, बट देन कैन AI अंडरस्टैंड वॉट दैट एग्जैक्ट सॉन्ग रिमाइंड यू ऑफ योर फर्स्ट लव. मतलब उसको ये थोड़ी ना फीलिंग समझ में आएगी, उसको ये थोड़ी पता चलेगा कि वो क्या लिख रहा है. मे बी दैट्स वेयर ह्यूमन क्रिएटिविटी बिकम्स डिफरेंट, राइट? टेक्नोलॉजी बना सकती है, क्रिएट कर सकती है म्यूजिक, पर जो हम इंसान अटैच होते हैं ना किसी स्टोरी के साथ, किसी म्यूजिक के साथ, वो शायद AI नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट आई फील. यू टेल मी कि आपको क्या लगता है, अब म्यूजिक जो है वो AI बना सकता है या फिर आप उसके साथ उतना अटैच हो सकते हैं या नहीं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM, ये है ऑलिव रिचार्ज और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सो दिस इज फॉर बॉलीवुड लवर्स, क्योंकि आज पहली तारीख है और हर पहली तारीख बहुत स्पेशल होती है। मुझे लगता है कि हर पहली तारीख को आपको कुछ मीठा भी खाना चाहिए, सैलरी भी आ जाती है। लेकिन आज आज की बात नहीं करते हैं, मैं कल की बात करती हूँ। कल वीकेंड मतलब फ्राइडे भी है और साथ ही साथ दृश्यम 3 रिलीज हो रही है थिएटर्स में। सो अजय देवगन वापस आ रहे हैं अलॉन्ग विद तब्बू और जयदीप अहलावत एंड प्रकाश राज, बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं। एंड दृश्यम जो है वो फ्रेंचाइजी ने इंडियन ऑडियंस के साथ एक इंटरेस्टिंग गेम खेला है। हम मूवी देखते हुए पुलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंट फील करने लग जाते हैं, अरे ये क्लू देखा, ये सीन कितना इंपॉर्टेंट था, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके ना सोचने लग जाते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है कि मूवी खत्म होने के बाद भी डिस्कशन खत्म नहीं होता। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुड थ्रिलर मूवीज। सो आई विल से कि भाई अगर आपका भी प्लान है मूवी देखने का तो बताओ जरा मुझे, और बताइए कि दृश्यम 3 आप फर्स्ट डे थिएटर में देखोगे या पहले रिव्यू और स्पॉयलर्स से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। बाय द वे, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो रिव्यू के बिना कुछ नहीं देखते, सो आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे अगर लगता है कि कास्ट अच्छी है, स्टोरी में थोड़ा भी वन टाइम वॉच का भी स्कोप है, तो मैं जरूर देखती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। नंबर तो सेम है 3311 1063। Stay tuned, Jio, Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
2: Plus 1 lakh riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
2: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.
3: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
1: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, jahan duniya bhar ke renowned designers aur labels ek hi roof ke niche with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
5: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
5: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट.
6: लुलु, where the world comes to show.
7: Only laga aur ho ja recharge.
8: Olive recharge.
9: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Binda.

एंड फाइनली हेलो अक्टूबर. यस, नया महीना है, नया कैलेंडर का पेज है और साथ ही अब वीकेंड भी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, ऑलिव रिचार्ज. और जैसे ही मंथ चेंज होता है ना, हमारी प्लानिंग ऐप सडनली एक्टिवेट हो जाती है. अक्टूबर में जिम स्टार्ट करेंगे, पहली तारीख को किताब पढ़ना शुरू करेंगे, हेल्दी खाना स्टार्ट करेंगे, अर्ली सोना स्टार्ट करेंगे और एंड में क्या होता है कि अरे यार अगले मंडे से पक्का, अगले संडे से पक्का, अगले नवंबर से पक्का. बट मे बी एवरी मंथ को इतना ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती. मे बी अक्टूबर में बस एक स्मॉल छोटी सी चीज़ है जिसे आप चेंज कर सकते हो. किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लो, एक पेंडिंग मूवी देखनी जो रह गई थी उसे देख लो, एक किताब फिनिश कर दो, वार्डरोब का वो कबोर्ड जो क्लीन करना रह गया था वो कर लो, या बस एक दिन बिना किसी गिल्ट के आराम करना है वो भी कर लो. क्योंकि प्रोसेस का मतलब हमेशा बिग चेंज तो नहीं होता. समटाइम इट्स सिंपली एक छोटी चीज़ को आप महीनों से पोस्टपोन कर रहे हो, बस फाइनली वही कर देना, एक नया स्टार्ट हो सकता है. सो दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. आई एम सो एक्साइटेड. थर्सडे है, आप सब आज बहुत सारे प्लान्स बनाकर आए होंगे. सो गो एंड हैव फन. कल मिलते हैं शाम को विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशन. तब तक के लिए अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. अक्टूबर में आप वन स्मॉल थिंग अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो जरूर बताइएगा. नंबर तो सेम है, 3311063. फॉर नाउ आई हैव टू से बाय. टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st to 4th October तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
5: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
6: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
4: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd October,
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: ओवरसीज रिलीज बाय जी स्टूडियोज़।

0: समय से इवनिंग शुरू हो चुका है भाई साहब, मेरा स्टूडियो इट्स फ्रीजिंग कोल्ड यार, मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। अक्टूबर आ चुका है, पहला दिन है आज अक्टूबर का। भाई साहब मेरा स्टूडियो क्यों ऐसे, मतलब ऐसा फिनलैंड बना हुआ है यार, बुरा हाल हो रखा है मेरा। कांपते कांपते आज मैं शो करने वाली हूँ। हैप्पी वीकेंड है जी।
1: ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई अरे कोई आ जाए मेरे ख्यालों में।
0: आपके ख्यालों में आज पूरा दिन कौन आ रहा था, कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311107।

जादू अब सिमरन कौर का चलने वाला है बेबी, आपके दिन के बारे में, गुड इवनिंग के बारे में और आपके पूरे दिन के बारे में और वीकेंड के बारे में सारे मैसेजेस कर दो 3311106 3 पर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 Riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
3: Plus 1 lakh Riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
2: Offer valid till 16th March 2027.
3: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
2: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.
4: ਸਸਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰਜਨ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ
5: ਆਲ ਆਫ ਸਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
7: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

पूरा जोर लगा दिया यार इस गाने पे, आप भी अपना वीकेंड को एंजॉय करने में पूरा जोर लगा दीजिएगा। ये तो आज सिमरन को नहीं पता कि वो कहाँ

0: करे वो करिए। हैप्पी वीकेंड तनु सारे नु बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे। अक्टूबर मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। और बताइए आज आपके वीकेंड के क्या प्लान है? घर पे रहने का प्लान है, बाहर जाने का प्लान है, मतलब या फिर ऐसा बाहर जाके किसी दूर सी लोकेशन पे करक पीने का प्लान है? क्या करने वाले? हाउस पार्टी करने वाले हो, क्या करने वाले? शॉपिंग करने वाले हो या घर का काम करने वाले? जो करने वाले बताओ यार। 3311063 पर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में प्रेयर टाइम होने वाला है तो मैं बाकी की बातें थोड़ी देर में करती हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
3: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
4: लुलू, where the world comes to shop.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: Main bete ke liye justice chahiye.
7: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
5: Drishyam The Conclusion starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
8: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega batana mushkil hai.
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. आखिरी हिस्सा बाकी है.
5: ओवरसीज रिलीज बाय जी स्टूडियोज.
9: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है.
10: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन.
9: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में.
10: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे. और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट.
9: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st to 4th October तक है.
10: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स.
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
12: सिमरन के साथ.
13: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

जिगर फेफड़े बेचारे, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो यार? उनका भी नाम लो यार, बुरा मान जाएंगे यार। क्योंकि मुझे बिरयानी का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, पर मैं चिकन नहीं खा सकती हूँ। दूसरे तरह के वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो अपने आप को एगिटेरियन कहते हैं। मैं भी कहती थी पहले, ठीक है, कि मैं एग खा लेती हूँ लेकिन मैं चिकन नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, एगिटेरियन हूँ, ओके। और तीसरी तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम अंडा नहीं खाते, हम चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, लेकिन केक में जो अंडा है या कुकीज़ में जो अंडा है उसके बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे। वो खा लेते हैं, मतलब अंडे वाला केक खा लेते हैं, अंडे वाली कुकीज़ खा लेते हैं, अंडे से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं, जब तक उनको ये ना बताया जाए कि अरे इसमें तो अंडा है। लेकिन कभी कभी वो ये भी बोल देते हैं, अरे मैं केक वेक तो खा लेता हूँ, मतलब मैं खा लेती हूँ केक वेक। और एक और तरह के लोग होते हैं प्योर वेजिटेरियन, जिनके साथ डाइनिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो हर चीज़ में बोलेंगे कि भाई इसमें चिकन तो नहीं है, अरे नहीं इस जगह पे चिकन बनता है, तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे खाने नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन जगह पे खाना खाऊंगा। सो अलग अलग तरीके के वेजिटेरियन लोग जो हैं वो होते हैं। आप मुझे बताइए आप इनमें से किस तरह के प्राणी हैं। 3311106 पर

0: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, jahan duniya bhar ke renowned designers aur labels ek hi roof ke niche with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
1: ਮੌਸਮ
0: मैं ना हर वीकेंड पे जब मेरे को बाहर निकलना होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि यार दिल में ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चश्मे लगाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वाइपर नहीं लगे होते ना अपने चश्मे पे, तो अपने आप साफ नहीं होते, चश्मा उतार के साफ करना पड़ता है। और हर बार मैंने चीज़ ये नोटिस की है कि जब भी वीकेंड होता है ह्यूमिडिटी एकदम हाई हो जाती है। सो आज का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो अभी के लिए 70% है। सो यार आप हालत देख रहे हो, मुझे पता है अगर नीचे जाऊंगी तो मेरे चश्मों से मुझे कुछ दिखने नहीं वाला है जब तक मैं उसको साफ नहीं करूंगी। यार विंड जो है 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। क्यों, मतलब क्यों हो रहा है यार? हाय हाय, वीकेंड ते तो वैसे भी नींद नहीं आती, खुशी के मारे की कल छुट्टी है यार।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
4: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
3: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
4: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
3: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।

हाँ जी मतलब इंडिया में एक लड़का था, ये न्यूज वायरल हो रही है कि उसकी बंदी ने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो जो लड़का था वो उसके पीछे जो है उससे मिलने के लिए वो अमेरिका पहुंच गया। लेकिन इसके बीच की कहानी जो है वो ये है कि भाई ये जो बंदा था 31 साल का था और जिस लड़की से वो चैट कर रहा था वो 17 साल की थी और अपनी एज का झूठ जो था ये 2 साल से लड़का जो था वो बोल रहा था। जब उसको पता लगा भाई साहब, उसने बोला कि भाई मैं नहीं, मेरा हो गया भाई, मैं उसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद लड़का उसको धमका भी रहा है ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऑनलाइन, जो है जो कि अपने कतर में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन आप किसी को ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ेगा और जेल भी आपको हो सकती है। तो ये गलत से गलत चीज है। सो या ये थी उसकी कहानी। और जब वो अमेरिका पहुंचा, वहां पर जाके वहां की पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया एंड ऑल। सो ये बात है कि हम आधी न्यूज जो है वो पढ़ लेते हैं और लोग कर रहे हैं ओ मतलब इंडिया से वो अमेरिका चला गया अपनी बंदी को मनाने के लिए। नहीं भाई, पूरी न्यूज पढ़ा करो यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। अब वो सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
4: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
3: Drishyam the conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas released by Z Studios.
7: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
8: I'm Anil Kapoor.

0: ट्वैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 6:18 47 seconds ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਖੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। मतलब मैं मुस्कुराई हुई नहीं है और क्या बात कर रहे हो। धीरे धीरे करके मौसम के नखरे जो है वो कम हो रहे हैं, और अगर आपको कैंपिंग पसंद है तो कतर का विंटर कैंपिंग सीजन जो है वो इस 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, इसे महीने स्टार्ट होने वाला है, फिर वो अगले साल 20 अप्रैल तक चलेगा। यार कैंपिंग सीजन जब होता है ना भाई, बड़ा मजा आता है। एकदम ठंडी होती है, फिर एकदम कैंपिंग चल रही होती है और बढ़िया सी मार्केट्स वगैरह लगी होती हैं, और हम लोग बाहर जाते हैं, ओवरनाइट जो है वो स्टे करते हैं, खाना पीना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है यार। आज तो खुले आसमान दे थले अपा लेटे हुए हैं, है ना। सो ये वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। बस मैं सीरियसली वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए यार। सिमरन कौर आपकी साथ, जी गोविंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

रहे हो कि दादी की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल। आपके वीकेंड के प्लान आप मुझे बता सकते हो क्योंकि 9 बजे तक हूँ आपके साथ, तो शेयर कर सकते हो। नंबर वही है, अगर वीकेंड भी प्लान नहीं बताना चाहते, कुछ और शेयर करना चाहते हो, सो 3311063 पे व्हाट्सएप कर दो यार। जेंजी लिंगो को हम करते हैं यहाँ पे डिकोड। अगर आप किसी जेंजी के साथ चैट कर रहे हैं तो उसने आपको लिख के भेज दिया TFW। सो TFW का मतलब होता है दैट फीलिंग व्हेन। सो जब आप इतने शॉर्ट में लिख सकते हो तो इतना ज्यादा आपको उंगलियां चलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आपको दैट फीलिंग व्हेन लिखना हो तो TFW करके आप जो है वो लिख सकते हो। क्या बोलते हो?

0: दिल में तो तू ही है यार।
1: सोचा तेरे बारे बैठा पानी दे किनारे मैथों मिला दूर तू है तामी खाबा बिच को
0: मारियो थोड़ी देर में यार।

0: इसकी प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
1: Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
2: Plus 1 lakh riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
2: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.
3: Fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: रेडियो ऑलिव

0: थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। देखो यार, सॉन्ग रिक्वेस्ट जब आप करते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखो कि आप ना वीकेंड के हिसाब से सॉन्ग का रिक्वेस्ट किया करो। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि यार जब वीकेंड का माहौल होता है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार आपको मतलब थोड़ा ऐसा गाने जो है वो चूज करने हैं जो कि थोड़े से यू नो वाइब उनकी अच्छी है। अगर थोड़ा सा सैड गाना भी है, उसमें थोड़ा सा बीट जो है वो होना चाहिए ताकि सुनने वाले को भी मजा आ जाए, है ना। सो सॉन्ग रिक्वेस्ट करने के लिए एक और शर्त ये भी रहती है कि आपको गाना होता है। एक दो लाइन गाइए और भेज दीजिए 3311063 पर। उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने दृश्यम 3 की टिकट्स जीती थी, सैटरडे को हम शो देखने वाले हैं दोपहर के 2 बजे। सो एक बार आप लोग भी मुझे कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि आप सबको कॉल जो है वो जा चुका है रेडियो ऑलिव की तरफ से। अगर आपने अभी तक टिकट्स जो है वो कलेक्ट नहीं करी है तो कर लीजिए, सैटरडे मॉर्निंग में आके हमारे ऑफिस से जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: ड्रामा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR,
3: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
2: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
3: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
2: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ फिल्म की बात करें ये उन फिल्मों से एक थी उनमें से एक ये फिल्म थी जिसकी ओरिजिनल ट्यून्स ओरिजिनल सॉन्ग्स थे बैकग्राउंड ओरिजिनल म्यूजिक जो था वो कहीं से लिया नहीं गया था और ये जो रोल था ना सामिया सिद्दीकी का जिसमें रानी मुखर्जी जिनका कैरेक्टर करती है वो ऐश्वर्या राय के लिए लिखा गया था बट समहाउ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय का जो एक फिल्म आने वाली थी चलते चलते उस सेट पे दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई थी फिर दोनों फिल्मों में एक चलते चलते और वीर ज़ारा में दोनों में रानी मुखर्जी ने रिप्लेस कर लिया था सो या और उसके साथ साथ 2004 जो था वो मोस्ट सक्सेसफुल ईयर था फॉर शाहरुख खान है ना किंग खान ऑफ बॉलीवुड ठीक है तो क्योंकि उन्होंने वीर ज़ारा उनकी अच्छी गई स्वदेश उनकी अच्छी गई मैं हूं ना सुपर डुपर हिट जो थी ये फिल्में रही और भी बताऊंगी इस फिल्म के बारे में बातें लेकिन और बताओ ठीक हो खुश रहा करो यार

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब उस सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
4: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
3: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas released by Z Studios.
7: Hello to all the listeners of V.

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो प्रिजन सीन्स थे ना वो एक ही दिन में शूट किए गए थे, क्योंकि जो था मतलब इन्होंने कर लिया था, जिसमें शाहरुख खान जो था वो विग पहन रहा था, क्योंकि उसमें वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो उसकी काफी ज्यादा एज जो है वो शाहरुख खान की हो चुकी है। इस फिल्म का टाइटल पहले वीर ज़ारा नहीं रखा गया था, इस फिल्म का टाइटल पहले रखा गया था ये कहां आ गए हम, सिलसिला फिल्म का वो गाना है ना ये कहां आ गए हम, तो उससे जो था किया। लेकिन यश चोपड़ा ने बोला नहीं यार वीर ज़ारा जो है ना वो ज्यादा मूड के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से ज्यादा सही लग रहा है। बट उन्होंने एक काम किया, ये कहां आ गए हम जो टाइटल उन्होंने पहले रखा था उन्होंने ट्विस्ट करके इसका एक गाना बना दिया था, ये हम आ गए हैं कहां, जो कि गाना बहुत ही प्यारा है यार। बट इसमें जो अमिताभ बच्चन वाला रोल था वो पहले धर्मेंद्र को माइंड में रख के जो है वो किया गया था, बट धर्मेंद्र के सर के जो रिलेशनशिप थे वो यश चोपड़ा के साथ अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने ये रोल जो था वो रिजेक्ट कर दिया। सो इसमें एक बहुत ही फनी सीन रहता है जब शाहरुख खान दिव्या दत्ता को मिलने के लिए आते हैं ना, तो दिव्या दत्ता का क्या होता है कि वो बेड से उठ के, इनका सीन होता है कि वो मिलती हैं शाहरुख खान से, सो वो दो बार उठी फोर्स के साथ, वो जो उन्होंने एक वॉल बनाई हुई थी ना, जो आर्टिफिशियल वॉल बनाई हुई थी, उसके पीसेस जो है वो टूट के गिर जाते हैं, फिर उसके बाद टीम हर टाइम उसको फिक्स कर रही है, बट इस टाइम डिसाइड किया गया कि वो फोर्स के साथ दिव्या दत्ता जो है वो नहीं उठने वाली है ना, तो दिव्या दत्ता एकदम आराम से उठी बट वॉल जो थी वो फिर से टूट गई। इस बात पे शाहरुख खान को इतनी ज्यादा हंसी आई कि यश चोपड़ा ने बोला भाई इन लोगों की हंसी जो है वो नहीं रुक रही है, उन्होंने बोला शूट बंद करते हैं पहले हंसी बंद करो, तो 20 मिनट बाद शाहरुख खान और दिव्या दत्ता ने शूट को जो था वो रिज्यूम किया, क्योंकि दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी यार। सो या ये थी इस फिल्म से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, और इंटरेस्टिंग सा रियलिटी चेक लेके वापस लौट रही हो यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 7:35 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। चलो रियलिटी चेक देते हैं।
1: रेडियो ओलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: देखो, एक काम अपनी लाइफ में जरूर कर लो कि अपने आप को उस मोह से मुक्त कर दो जिसे तुमसे कोई मोह नहीं है। हम कभी कभी जो है ना, वो ऐसे लोगों के लिए करते रहते हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं, आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं, आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मोह जो है वो उनको छोड़ता नहीं है। तो जो आपसे मोह नहीं करता है, मतलब प्यार नहीं करता है ना, उनको उनका मोह जो है वो लाइफ में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको जो है ना वो स्ट्रेस ही देगा लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि जहां पर मोह है यानी कि प्यार है, वहां पर एक्सपेक्टेशन है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है वहां पे आप हर्ट होते हो। तो ये सी चीजों की टेंशन लेनी क्यों, जो आपका करे आप उसका करो और

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

Tüm mi girendi he bebi? ਕਿਰੀ ਸੋਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਲ ਸਿਮਰਨ ਗੌਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ चलो क्विकली अब आप मुझे एक एक करके अपना नाम बता के बताओगे कैसे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ठीक है मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ 3311063 जी हाँ 3311063 इस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है और जितने नाम अभी मुझे दिखेंगे अगर आपने लिख के भेज दिए टाइमली तो वो सारे नाम मैं अभी बोल दूंगी अगला गाना शुरू होने से पहले बिष्णु जी फिलिप जी मोहम्मद जी आसमा जी दिनेश जी कश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए रेहान जी थैंक यू सो मच जुल्फिकार जी शुक्रिया श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच सफदर जी थैंक यू सो मच बिलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए कामरान जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी थैंक यू सो मच फातिमा जी फातिमा यूसुफ जी थैंक यू सो मच जुल्फिकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए हुसैन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए लतीफ उल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए खिजर हयात खान जी थैंक यू सो मच अली साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए रिवू जी थैंक यू सो मच सलाउद्दीन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए अतर हुसैन जी सुबह जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए नीलू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए वेलकम जी थैंक यू सो मच वेलकम लिखा अच्छा अच्छा आपने वेलकम लिखा ओके मलिक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए शीनू जी बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए हाजरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए 3311063 पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना सुभाषिष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए विष्णु ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ दिनेश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया निहाल जी थैंक यू सो मच नबील जी थैंक यू सो मच परवेज जी थैंक यू सो मच सागर जी थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर ऑल जिन जिन लोगों के नाम लिख लिया बेटा अब आप थैंक यू बोल दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के जरूर भेज देना एंजॉय करो

0: Drive the Dream has arrived at Abusudra Mall. Just spend 100 real, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
1: Plus 1 lakh real in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
0: Offer valid till 16th March 2027.
1: Hurry to Abusudra Mall, grab your coupon and win your dream car.
0: Drive the Dream, only at Abusudra Mall.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
4: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10, 20, 30 प्रमोशन।
3: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10, 20, 30 के प्राइस रेंज में।
4: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
3: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
4: नेस्टो 10, 20, 30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।

0: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Stuck again.

तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, इंटरनेशनल कॉफी डे। पिछले एक साल से मेरी सुबह जो है वो चाय की जगह ब्लैक कॉफी से होती है, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, और अमेरिकानो आजकल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। ऐसा नहीं है कि चाय से मेरा प्यार खत्म हो गया, लेकिन कॉफी जो है वो थोड़ा सा मुझे आजकल उससे प्यार है। मैं क्या जी सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। सो कॉफी जो है वो बेसिकली ग्लोबल एडिक्शन है, हम सबको पता है कि, लेकिन एक चीज आपको नहीं पता है, दुनिया में रफली 3 बिलियन कप्स जो है वो कॉफी के हर रोज कंज्यूम होते हैं। मतलब चाय के साथ साथ कॉफी लवर्स जो है ना, उनकी भी कमी नहीं है यार। एंड कॉफी का जो इफेक्ट है वो आपकी नींद पे नहीं होता है, लेकिन आपके ब्रेन पे भी होता है। जैसे आप कॉफी पीते हो आपको लगता है अरे भैया अब जो है ना वो थोड़ी दुनिया जो है अच्छे से दिखाई दे रही है। एंड कॉफी जो है ना वो एक फ्रूट से आती है। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता था, आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा। कॉफी बीन्स हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन ये एक चेरी के अंदर होता है। और टेक्निकली क्या होता है कि फ्रूट का जो सीड है ना उसको हम रोस्ट करके कॉफी पी रहे हैं। सो आप बताइए आपको किस तरह की कॉफी जो है पसंद है, क्योंकि कॉफी की बहुत सारी वैरायटीज है। सिमरन कौर आपके साथ, जी हो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सिद्रा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सिद्रा मॉल।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे।

जाने से पहले एक गाना मैं उनके लिए बजा के जाऊंगी जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेबी का बर्थडे बैश या बाबा का बर्थडे

Pay. Club Olive. Club on radio. 6.3 FM.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है